याद कर, नफ्स दुश्मन है दुश्मन को नाशाद कर, अपने मालिक से उठ कर के फरियाद कर।

ये नालायकों पर है रब का करम. वी नो वी आर नालायक, वी नो वी आर नॉट डिजर्विंग ऑफ एनीथिंग, एस्पेशली बीइंग इन दैट मुबारक लैंड एंड मुबारक प्लेस एंड गेटिंग डेथ इन दैट प्लेस एंड बीइंग बरीड देयर. वी नो वी आर नॉट डिजर्विंग, इट इज जस्ट रब का करम दैट वी आर देयर इन मदीना शरीफ, और हूएवर इज रिजाइडिंग देयर इन मदीना शरीफ. It is Allah Ta'ala's fazal and Allah Ta'ala's ihsan that He created a means for their maghfirat if they are seeking it. Shafa'at Muhammad ki bhi ho naseeb.

है बस एक अगर हूं तो खार में हूं। ओ माय बिलवड अल्लाह, इन योर गार्डन एवरी वन इज अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंट रोज, द ओनली वन दैट इज अ थॉर्न इन द गार्डन इज माई सेल्फ।

तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूं।

गुना में आलूदा हो रहा है। Every hair of mine, O my Allah, is immersed in the ocean of sins.

तेरी मोहब्बत में अब जीऊं मैं। हा माय अल्लाह, माय लाइफ विच इज गॉन इज गॉन, द लाइफ विच रिमेन्स आई लिव इन योर मोहब्बत इन योर लव, जस्ट एज आई स्पेंट माय लाइफ इन द मोहब्बत एंड द लव ऑफ शैतान एंड नफ्स, या अल्लाह नाउ लेट मी लिव इन योर लव इन योर मोहब्बत।

में हूँ, तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूँ। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूँ। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब

अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है।